विष्णु शशि वरुणं चतुर्भुज प्रसन्न वरुणं न्याये सर्व विघ्नोपशान्ते या देवी सर्वभूतेषु शाडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। कैलाश पर्वत की बनार होते करने देकोर परिवार की आसन में ते भगवान शंकर

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: दे तुझको सांझ सवे
0: स्टॉप दैट वन सी ना कह रहा मैसेजेस मैं आगो फाइटर ले
2: That is a Diane. Diane, how the thing, man.

स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति वनस्पतिर सुरभूतो गंधार्यो सुमनोहर विलीपनां सुर श्रेष्ठां भूपुयं प्रति ग्रेतां May you fragrant of your existence, we beg of thee. We offer hearty, for

विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे भूतस्य जाता पतिरिक्यासि सदाधारं पृथिवीं नमः दक्षिणादानं महं करिष्ये बियोफोर फ्लावर्स ओम माला मल्लिकार्णी सुगंधिनी मल्लिकार्णी वे प्रभु मायातानि पूजातम्।